0: இருந்து அஞ்சல் செய்ய கேட்கலாம்.
1: नमस्कार, संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं विदुषी स्मिता मोकाशी का शास्त्रीय गायन।
2: नमस्कार, इन टुडेज ऑल इंडिया प्रोग्राम ऑफ म्यूजिक वी ब्रिंग टू यू अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय विदुषी स्मिता मोकाशी।
1: सुरों की साधना और शास्त्रीय गायन की समृद्ध परंपरा को आत्मसात करने वाली आकाशवाणी और दूरदर्शन की
3: द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पारित किया। डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि खेत बचाओ अभियान में खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इसे व्यापक राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि सोमवार से शुरू हो रहे अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: किसानों की खेती और मिट्टी को सुरक्षित रखने के लिए खेत बचाओ अभियान सोमवार से शुरू होगा और यह 30 जून तक पूरे देश में चलाया जाएगा। इस अभियान में कृषि विज्ञान केंद्र सभी भाग लेने वाली संस्थाओं के मुख्य समन्वय की भूमिका निभाएंगे। इस अभियान के लिए 1600 से अधिक टीमें बनाई गई हैं। इसके अलावा जिन 100 जिलों में रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होता है वहां विशेष रूप से 500 टीमें गठित की गई हैं। इस अभियान के दौरान खेतों को बचाने और किसानों को समय पर सही सलाह देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों के लगातार हो रहे उपयोग को कम करना है। किसानों को मिट्टी की जांच के आधार पर उर्वरकों और अन्य कृषि संसाधनों के संतुलित उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। साथ ही उन्हें जैविक खाद और जैव उत्पादों के अधिक उपयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि समाधान दीदी वर्तमान में सभी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में काम करता है। डॉक्टर सिंह ने बताया कि एआई और तकनीक के उपयोग के कारण लोक शिकायतों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट और प्रथम दिन का कवर जारी किया। इस अवसर पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बधाई संदेश पढ़ा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिंदी पत्रकारिता की द्विशताब्दी भारत की चेतना, विचार और जन जागरूकता का उत्सव है। राष्ट्रीय संचालन समिति ने प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम आईटीआई क्लस्टर के लिए एक निजी कंपनी आर्सेलर मित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया के रणनीतिक निवेश योजना एसआईपी को मंजूरी दे दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री कौशल और रोजगार क्षमता परिवर्तन प्रधानमंत्री सेतु योजना के अंतर्गत स्वीकृत होने वाली पहली एसआईपी है। आंध्र प्रदेश इस योजना के अंतर्गत उद्योग साझेदारी को क्रियान्वित करने वाला पहला राज्य है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सियो सेंग जाय और किम वान हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो मिक्स डबल्स सेमीफाइनल में हार गईं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में ओलावृष्टि के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना व्यक्त की है। कल आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, माहे, लक्षद्वीप और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं किरण शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया। अमेरिका और भारत के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर भी प्रकाश डाला। म्यांमार के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान में अफगान शरणार्थियों को ले जा रहे एक ट्रक के राजमार्ग पर पलट जाने से 22 लोगों की मौत। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के पुरुष युगल फाइनल में पहुंचे। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया है। उन्होंने सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला संवाद में भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और संतुलन का एक महत्वपूर्ण आधार बताया है। श्री हेग्सेथ ने भारत के सैन्य आधुनिकीकरण और रक्षा औद्योगिक क्षमताओं की भी खुलकर प्रशंसा की। रक्षा सचिव ने भारत के रक्षा विनिर्माण क्षेत्र की भी सराहना की और उन्नत सैन्य अभियानों में सहयोग करने की उसकी बढ़ती क्षमता का उल्लेख किया। श्री हेग्सेथ ने कहा कि भारत उच्च स्तरीय सैन्य क्षमताओं को बनाए रखने के लिए आवश्यक औद्योगिक और रसद अवसंरचना विकसित कर रहा है, जिसमें साझा रक्षा प्लेटफार्मों की मरम्मत और रखरखाव करने और क्षेत्र में कार्यरत अमरीका की नौसेना के जहाजों का सहयोग करने की क्षमता शामिल है। श्री हेग्सेथ ने कहा कि भारत और अमेरिका सैन्य तैयारियों को बढ़ाने के लिए संयुक्त उत्पादन पहलों पर भी काम कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्रियों ने आज यूके यूएस सुरक्षा समझौते के तहत सैन्य क्षमता बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा मजबूत करने और समुद्र के भीतर केबल की सुरक्षा के लिए पानी के नीचे ड्रोन तकनीक विकसित और तैनात करने की एक संयुक्त भागीदारी की घोषणा की। इन नेताओं ने सिंगापुर में आयोजित शंग्रीला संवाद सुरक्षा सम्मेलन में कहा कि अंडर सी व्हीकल तकनीक के अगले वर्ष तक तैयार होने की संभावना है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री जॉन हीले ने कहा कि ब्रिटेन इस परियोजना में 20 करोड़ 10 लाख डॉलर का योगदान देगा। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की 5 दिवसीय यात्रा के दौरान नई दिल्ली पहुंच गए हैं। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले म्यांमार के राष्ट्रपति बिहार में गया गए और महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और व्यापारिक नेताओं का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। वर्तमान पद पर रहते हुए राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने श्री ऊ मिन आउ लाइन से मुलाकात की है। एक रिपोर्ट।
1: डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के प्रति म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। उन्होंने कहा कि वे शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए श्री ऊ मिन आउ लाइन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। म्यांमार के राष्ट्रपति सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे एक व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। श्री ऊ मिन आउ लाइन मंगलवार को व्यापारिक तथा औद्योगिक वार्ता और स्थल भ्रमण के लिए मुंबई जाएंगे। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने और होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने वाले एक संभावित समझौते की उम्मीदों के चलते ब्रेंट क्रूड तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई, जो पिछले 6 वर्षों में सबसे बड़ी मासिक गिरावट है। एक रिपोर्ट।
2: इस महीने अंतर्राष्ट्रीय तेल मानक में लगभग 19% की कमी आई है, जो मार्च 2020 के बाद से इसका सबसे बड़ा मासिक नुकसान है। तब कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक गतिविधियों

0: में भारी गिरावट आई थी। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल की कीमतों में इस महीने लगभग 17% की गिरावट आई, जो अप्रैल 2025 के बाद से इसका सबसे खराब प्रदर्शन है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के साथ शांति समझौते पर अंतिम निर्णय लेने के लिए व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में बैठक करने की घोषणा के बाद कीमतों में गिरावट आई। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट 1.73% गिरकर $87.36 प्रति बैरल पर बंद हुआ, जबकि ब्रेंट 1.77% गिरकर $92.05 प्रति बैरल पर स्थिर हुआ। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण उत्पन्न वैश्विक अनिश्चितता के बावजूद मजबूत बना रहा है। वित्त मंत्रालय की मई 2026 में मासिक आर्थिक समीक्षा के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार सुविधाजनक स्थिति में है। मंत्रालय ने कहा है कि वैश्विक परिवेश, कच्चे तेल के दाम बढ़ने, वित्तीय स्थिति सख्त होने और प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास दर कमजोर पड़ने का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। सरकार ने पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में बाधा को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को 30 दिन का एलपीजी भंडार संरक्षित करने का निर्देश दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कल नई दिल्ली में ये जानकारी दी।
2: Regarding the efforts of the government to keep the price stable, Bharat Sarkar ne excise duty kam ki. So these all efforts have been done to keep the price stable. We are working on the strategic reserves also. Oil marketing companies ko work out karne ke liye kaha hai ki LPG ka jo reserve hai, that should be minimum 30 days with them. And they are working on it. And similarly for crude also we are working.
1: सुश्री सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार रणनीतिक भंडारों के माध्यम से ईंधन सुरक्षा मजबूत करने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने बताया कि किसी भी एलपीजी वितरक केंद्र पर आपूर्ति की कमी की कोई सूचना नहीं है। अफगानिस्तान के लगमान प्रांत में आज एक हाईवे पर पाकिस्तान से लौट रहे अफगान शरणार्थियों से भरा एक ट्रक पलट गया। इस हादसे में 22 लोगों की मौत हो गई और 35 लोग घायल हो गए। मृतकों में 10 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल हैं। प्रांत के सार्वजनिक स्वास्थ्य निदेशक अमीन उल्ला शरीफ ने बताया कि चालक के कथित तौर पर सो जाने के कारण ट्रक खाई में गिर गया। ये यात्री उन हजारों अफगानों में शामिल थे जो 2023 में इस्लामाबाद द्वारा अवैध प्रवासियों पर शुरू की गई कार्रवाई के बाद हाल ही में पाकिस्तान से लौटे थे। भारतीय हज मिशन ने सऊदी अरब में आयोजित इस वर्ष के खितमाहु मिस्क समारोह में 2 प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते हैं। ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। सऊदी हज मंत्रालय द्वारा तीर्थयात्रियों की उत्कृष्ट सेवाओं को मान्यता देने के लिए प्रतिवर्ष दिए जाने वाले लबैतुम पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ हज समन्वय और संचार श्रेणी के तहत भारतीय हज मिशन को प्रदान किए गए हैं। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में उन्होंने दक्षिण कोरिया के सीओ सेयोंग जाए और किम वॉन हो को हराया। ध्रुव कपिला और तनीशा क्रॉस्टो मिक्स्ड डबल्स सेमीफाइनल में हार गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने भारत को क्षेत्रीय स्थिरता का एक प्रमुख स्तंभ बताया। उन्होंने अमरीका और भारत के बीच बढ़ती रणनीतिक साझेदारी पर भी प्रकाश डाला। म्यांमा के राष्ट्रपति यू मिन आंग हलाइंग 5 दिवसीय भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंचे। अफगानिस्तान में अफगान शरणार्थियों को ले जा रहे एक ट्रक के राजमार्ग पर पलट जाने से 22 लोगों की मौत। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी सिंगापुर ओपन के पुरुष युगल फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

रात जब थोड़ी और गहरी हो जाती है तो दिल के कुछ खामोश एहसासात जागने लगते हैं। कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ चेहरे और कुछ गीत जैसे दिल के किसी कोने में सोते सोते करवट से लेते हैं और जागने से लगते हैं। नमस्कार, आप सुन रहे हैं हर सिंगार और मैं हूं नूपुर। आज की रात आपके साथ आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज की रात बात उस एहसास की जब कोई बिना दस्तक दिए चुपके से दिल में उतर जाता है, जब किसी की मुस्कान, किसी की नजर और किसी की बातें धीरे धीरे हमारी धड़कनों का हिस्सा बन जाती हैं। चांदनी रात में दिल ने एक दुआ मांगी थी, तेरी हंसी में अपनी दुनिया मांगी थी। न जाने कब हो गया असर मोहब्बत का, बस तेरी बातों में हमने तो जीने की वजह मांगी थी। 1973 की एक सदाबहार धुन, फिल्म यादों की बारात का वो गीत जिसने मोहब्बत को एक नई आवाज दी। अपनी आवाज के जादू से इसे सजाया मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, और इस गीत में सुरों का जादू जो खोला वो खोला आरडी बर्मन जी ने। अगर इस वक्त कोई आपके ख्यालों में है कोई ऐसा जिसका नाम आते ही होठों पर मुस्कान आ जाती है, तो एक गीत शायद उन्हीं के लिए है। तो आइए सुनते हैं वो नगमा जिसे जब भी सुनो उतना ही प्यारा लगता है, उतना ही अपना लगता है जब पहली बार सुनने पर लगा था।

कुछ गीत सच में वक्त से परे होते हैं, है ना। हर बार सुनो तो लगता है जैसे प्यार फिर से पहली बार हो गया हो। कुछ गीत यूं ही दिलों में उतर जाते हैं, कुछ लोग यादों में हमेशा ठहर जाते हैं, और कुछ रातें बस एक गीत के सहारे जिंदगी को थोड़ा और खूबसूरत बना जाती हैं। होता है ना कि कुछ लोग जिंदगी में ऐसे आ जाते हैं कि सब कुछ तो वही रहता है, वही रास्ते, वही मौसम, वही शाम, वही रात, वही दिन, लेकिन फिर भी सब कुछ बदल सा जाता है। हर बात के, हर चीज के मायने बदल जाते हैं। जब किसी का होना सिर्फ साथ होना नहीं बल्कि सुकून बन जाता है, किसी का आना सिर्फ मुलाकात नहीं रहता बल्कि जिंदगी भर के साथ का इरादा बन जाता है, वादा बन जाता है, तो इसी बात पर एक बहुत प्यारा सा गीत हमारा साथ देने चला आता है। 1975 फिल्म आंधी, इस फिल्म का एक बेहद रोमानी गीत जिसे अपनी दिलकश आवाजों से सजाया किशोरदा और लता जी ने, और जिसके शुरू में मोहब्बत की रूह बसाई आर डी बर्मन साहब ने। ये गीत सिर्फ प्यार की बात नहीं करता, ये उस एहसास की बात करता है जब किसी का साथ अंधेरों में रोशनी बन जाता है। तो आइए इस रात को थोड़ा और हसीन बनाते हैं और सुनते हैं वो गीत जो जब भी सुनो दिल की धड़कनों के साथ धड़कने लगता है। तुम आ गए हो, नूर आ गया है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक। होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अलावा आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से भी। तो याद रखें, रविवार 31 मई सुबह 11 बजे मन की बात।

बिल्कुल आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल, जिसे आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, प्रोग्राम है हर सिंगार, साथ हूँ मैं नूपुर, और प्यारे प्यारे रोमांटिक ड्यूएट्स हमारे साथ हैं आज की रात। कुछ रातें ऐसी होती है ना साथियों, जब नींद आंखों से रूठ जाती है, दिल किसी की यादों में कुछ खोया खोया, कुछ उलझा उलझा सा रहता है, और हम बस करवटें बदलते रहते हैं। कभी कोई हंसी याद आ जाती है, कभी कोई अधूरी बात, कभी किसी का साथ। अगला गीत उस मोहब्बत के नाम जिसमें इंतजार भी है, बेचैनी भी, और किसी अपने की कमी का मीठा सा दर्द भी। वो एहसास जब कोई पास ना होकर भी हर पल साथ महसूस होता है। फिल्म आपकी कसम का दिल को छू लेने वाला गीत, जिसे अपनी आवाजों से अमर बनाया किशोरदा और लता जी ने। ये गीत सिर्फ एक धुन नहीं, कह सकते हैं कि उन तमाम रातों का एहसास है जब मोहब्बत नींद से ज्यादा गहरी लगती है। रात भर चांद से तेरी बातें करते रहे, तेरी यादों में खुद को हम खोते रहे, नींद आई भी तो तेरे ख्वाब ले आई, हम यूं ही तन्हा करवटें बदलते रहे।

जज्बा के कुछ गीत ना जैसे दिल पर हल्की सी बारिश बनकर गिरते हैं। सुनो तो लगता है मोहब्बत अभी भी दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। मोहब्बत कभी फासलों में भी मिलती है और कभी पास रहकर भी दूरियां छोड़ जाती है, लेकिन जब दो दिल सच में एक दूसरे के हो जाएं तो वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं और फिर वही दूरियां नजदीकियों में बदल जाती हैं। 1967 की फिल्म आमने सामने का एक बेहद रूमानी गीत जिसे अपनी दिलकश आवाजों से सजाया मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने,

और संगीत में मोहब्बत की नरमी खोली कल्याण जी आनंद जी ने। एक ऐसा गीत जो ये एहसास दिलाता है कि प्यार में दूरी भी कभी कभी मोहब्बत को और गहरा बना देती है।

हरसिंगार आज यहीं तक। गीत के बाद ठीक 11 बजे सुनिएगा समाचार, और समाचारों के बाद 11:10 से हम फिर साथ होंगे यहीं FM गोल्ड पर।